आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय तारी है। देखे पिता अपना अंदर कच्ची पत्ती सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। इसके जी प्राण है के साहे मन विसारी है, आपन हटती अपना आपे ही पास वारी है।

निर्मल नाम जप हौ सद गुर मुखे, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागह, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागह, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावै त्यो राखहु हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला। जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ होवे सुपेख चतुराई, दुबिधा

गीत न पतंग की कुसुम सुबास जैसे त्रिपत न मधप को उड़त आकाश आस कटे न बेहंग की कटा कन घोर कटा कन घोर मोर चात्र कृदउलास नाद बाद सुन रत कटे न कुरंग की तैसे प्रिय प्रेम रस रसक रसाल संत कटत न तृष्णा कटत न तृष्णा।

0: सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुदया गै बिनवता।
1: सलोक पवन गुरु पानी पिता, माता करत महत दिवस रात दोहे दाई दाया, खेले सगल जगत।

सकत कहा। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी न। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

सब कुछ जानला, सब कुछ तेरे बस तेरा करपला, तेरा कर आनंद। वधाई तुद कर माण महता, तेज अपनाया पजर सर्ब कला, परपुर दिसै जत कता, नानक दासन।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवी कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लेहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महा मूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जीरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर राच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंट भयो शंकर अकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दोष्ट जिते उठ वत उत पाता, सकल मलेश करो राण काता। जी अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो।

ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट शाह स्व सक न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा।

सहाय, दुष्ट दुख तिल हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुमरे, तबते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

आदियास गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दो तां गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण, अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण। सवना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दियाँ इह वडियाइया। कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। बाजे पंच शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ।

जो आर हो पार कर जो हंदा निंदक दोष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती अकिरत कान मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निसतारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो दर्शन प्यासी दिन सुरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुख टल गुर सेवियन एहन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही सवना दिसाहु सजन सच्चा पातशाह सिर सांदे।

हम अवगुण परे एक गुण नाहीं, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई।

जन्म मरण दुख हो सिफत खसमी नूर अरसह कुरसह तू डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबनांद सजन सचा पात साहो सिर सांद जिस पास

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम वडाए, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दूसरा दुदाई खेल सब जग चंगियाँ बुरियाँ वच धर्म दूर।

दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी के

निर्विचार। कीते नचह मंगते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार। गावे राजे रानिया बोले आल पताल, लकटकियां के मुंडड़े लकटकियां के हार। जित तन पाई है नानका सेतन हो वैशा, ज्ञान ना गली ढूंढिया कथना करड़ा सा। कर्म मिले तो पाई है

0: पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हों मैं चखना चौक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तक कड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लव्या बो पेक किया देही दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे ऐन कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर छाई पाई मूर्खें दे पत गवाई विन नामे किस तो है ना पाई
0: रहे पानी
1: मड़ी मसानी अंदना जाने फिर पचानी सतगुर भेटे सो सपाए हर का ना मन मसाए नानक नदर करे सो पाए आ से अंधे से तीन केवल हों मैं शब्द जलाए।

प्यार, धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार, जती सदा वे जुगत ना जाने छड़ बहे घर बार, सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आख है, पत परवाना पिछे पाई है, ता नानक तो लिया जापे महला पहला।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुरमत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद धारं, गुर अर्जन गुण सहज विचारं,

सगल सृष्ट लग बेतरों तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों।

0: को प्रभ सर्व मैं अर्जुन गुर भगत कहेत पाए रहो मिल राम स्यो।
1: अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पद्धित ते मत चूके रे मन भेद विभेद न

सो कहौ टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसाम दी नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सूही महला पंजवा, तन सोहागन जो प्रभु पछन, मान हुकम तज अभिमान, प्रिय स्यो राति रलिया मान, तन सोहागन जो प्रभु पछन, मान हुकम तज अभिमान, प्रिय स्यो राति रलिया मान। सोने सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प ताज लाज लोकानी, रहा

बिनौ करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहे आप भरपूर। जन नानक गावै देख हदूर, बिनौ करी जे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहे आप भरपूर। जन नानक गावै देख हदूर। वाहिगुरु जी का खालसा, देख हदूर। वाह